कुरो तिख तिख तारी कलम लाए धान बकुरो पोदै बकुर तिख तिख तारी कलम लाए यो धनरे पुरो टपक कई मोर ला तलेरी का।